दर्शाई शाय खनपो कुछ थुपस्तान ने उजर सनाजा स्ंगजे आकाशवाणी लेने जुंजिक तंग इन स्ंगतो छुतो दुन तंस कर्मा सुमचु सुप्तुन छादु कसदांगजे दिरिंग इमे जिग्रम गुनस कोरकुन सनाजा।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
5: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी

0: की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि DRDO ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
1: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।

0: तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमेरिकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं, बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमेरिकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमेरिका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है, ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है, शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा, भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज. गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर. द हेडलाइंस. Prime Minister Narendra Modi to embark on six-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed three Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility along the border. United States says it opened to civil nuclear program of Iran under proposed peace deal. In badminton, PV Sindhu to face world champion Akane Yamaguchi of Japan in women's single semi-finals of Australia Open today. And in FIFA World Cup, United States takes 3-1 lead in ongoing match against Paraguay in Group D at Los Angeles. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be arriving in Nice, France this evening, embarking on a two-nation European tour spanning France and Slovakia. This is the Prime Minister's seventh official visit to France since 2014 and carries special diplomatic weight. Prime Minister Modi and French President Emmanuel Macron are set to hold their first bilateral summit since the elevation of India-France ties to a special global strategic partnership earlier this year. The Prime Minister will also participate in the G7 summit in Ivan, reaffirming India's standing as an indispensable voice of the Global South on the world stage. Our correspondent joins us now from Nice, France.
3: On arrival this evening, Prime Minister Modi will proceed to his hotel, where he will attend a community reception bringing together members of the Indian diaspora from across the south of France. The engagements on 14th of June opened on a note of innovation and ambition. Prime Minister Modi, alongside President Macron, will inaugurate Bharat Innovates, India's flagship innovation showcase at the Palais des Expositions de Nice. More than 120 Indian startups and companies will come together with leading investors and business leaders from France and across the world, spotlighting India as a global destination for deep tech, artificial intelligence and entrepreneurship. Thereafter, the two leaders will proceed to the historic Villa Kerglos for their bilateral summit, where defense, space, civil nuclear energy, technology and people-to-people ties are expected to feature prominently on the agenda. India and France share over 25 years of strategic partnership with deep cooperation in defense, space and a fast-growing economic relationship, with bilateral trade crossing $15.82 billion in 2025-26. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
0: After concluding his engagements in Nice, the Prime Minister will visit Slovak Republic from 14 to 16 June. Our correspondent, Smithy M. Paluruti from Bratislava, has filed this report.
4: The Slovak capital, Bratislava, is all set for the maiden visit of the Indian Prime Minister. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the Slovak Prime Minister Fico during the visit and explore new avenues of cooperation. The Prime Minister will also meet President Pellegrini during the visit. The Prime Minister's state visit assumes greater significance in view of the continuous increase in bilateral trade, which crossed $1 billion in 2024 and reached $1.8 billion last year. The visit will further reinforce India's commitment to strengthening cooperation with European Union member states. Midi M. Paluruti, Akashvani News from Bratislava in Slovak Republic.
0: Defence Minister Rajnath Singh today congratulated Defence Research and Development Organisation DRDO for successfully conducting three consecutive flight tests to demonstrate multi-layered defence against long-range ballistic missiles and anti-ship capability at medium range. In a social media post, the minister said that these tests have put India in elite group of nations having ballistics missile defense capabilities to engage ballistic missiles up to intercontinental ballistic missile. Mr. Singh said that DRDO has successfully demonstrated multiple crucial technologies bolstering nations' defense capabilities against different types of enemy threats. coming out parade is being held today at the Indian Military Academy, IMA, in Dehradun, the capital of Uttarakhand. President Draupadi Murmu is attending the occasion and has reviewed the parade. This year's passing out parade is historic, as for the first time, women cadets are passing out alongside gentlemen cadets from the academy. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today, we focus on the steps taken by the government to strengthen and celebrate the nation's cultural legacy.
5: Over the last 12 years, India's cultural journey has flourished and is rooted in tradition and open to the world. Government has undertaken numerous initiatives, both nationally and internationally, that have instilled a deep sense of pride in the country's cultural heritage among its people. The making of Kashi Vishwanath Corridor, Mahakal Lok Project, redevelopment of Maa Kamakhya Temple, reconstruction of Juna Somnath Temple, and establishment of Ram Temple in Ayodhya are the major highlights of the Modi government. Through spiritual circuit and modern pilgrim amenities, India's civilization pride is being seamlessly revived. Among the key initiatives driving this transformation have been the Museum Grant Scheme and the Cultural Function and Production Grant Scheme. These schemes have helped preserve India's civilizational heritage while simultaneously encouraging cultural creativity and grassroots participation. Under the Museum Grant Scheme, the nation's cultural infrastructure has been upgraded by establishing 21 new museums and modernizing 23 existing ones. Over the years, the scheme has emerged as a key support system in Nagaland. Talking to Akashwani News, Mr. Talit Ismail, guide lecturer with the Nagaland's Department of Art and Culture, highlighted the benefits of the scheme in the state.
6: 2016-17 Museum Grant established, we upgraded a new annexe, and there we have set up Games and Sports Gallery and then the Textile Gallery. Through the Museum Grant Scheme, the one thing most impactful thing we can say is it gave us some opportunity to build new infrastructure to preserve our traditions and culture.
5: The Cultural Function and Production Grant have also emerged as one of the cultural ministry's key instruments for supporting cultural activities across the country. The Manipur Dramatic Union, the oldest proscenium theatre organization in Manipur, is gearing up to launch a series of new theatrical production following a fresh infusion of financial aid. Talking to Akashwani News, Secretary of Dramatic Union Sorokhai Bam Sarat Chandra expressed gratitude to the government for sustaining regional arts through robust financial frameworks.
7: Since the inception of this organization, we have received from the Ministry of Culture so many production grants. Under this cultural production grant, under the new ministry, we have received this year, 125 lakhs. We are very thankful to the government of India, particularly this Ministry of Culture.
5: India has taken big steps to protect its culture and share it with the world. Ancient temples have been restored, holy places improved, and old traditions brought back to life. At the same time, new roads, clean facilities, and better services have made it easier for people to visit these places. People around the world are showing interest in India's way of life. Today, India's rich culture is not only shining at home, but also spreading light across the world. Aman Yadav, Akashwani News, Delhi.
0: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar spoke to U.S. Secretary of State Marco Rubio and lodged a strong protest over the attacks by the U.S. Navy in the Gulf that killed three Indian mariners. In a post on X, Dr. Jaishankar said such lethal actions against commercial shipping are not justified. The conversation comes days after three Indian crew members were killed in a U.S. strike on the Palau flag tanker MT Setebello off the coast of Oman, triggering a sharp response from New Delhi. India and Bangladesh have reaffirmed their commitment to maintaining peace, tranquility and stability along

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: Dagsangi shang fil melurik sanadat ngaji akashwani leni jenjik tangin skato chuchu chuchu chatuk kasa tang ime chuchu chungi sukpa FM Gold Delhi digrim akashwani Delhi ne sanadat.
1: साथ म्यूजिकल दिल लगी से भावना लेती है विदा 10:30 बजे दिल का

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के नीस शहर जा रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की सातवीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की तीन दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस

0: दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। भारत और फ्रांस के बीच वर्ष 2025-26 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव TV सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित करने का प्रस्ताव है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वे ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को नष्ट करना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैंडिडेट्स भी शामिल हुए। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। लॉस एंजलिस में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to France and Slovakia from today to further deepen India's partnership with two European nations. The visit will also reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. In the first leg of the visit, the Prime Minister will visit Nice for a bilateral meeting with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will review the full spectrum of the India-France bilateral relationship and jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which will bring together top innovation startups and venture capital funds from India, France and other countries. On the second leg of his visit, Mr. Modi will visit Slovakia. He will hold talks with his Slovakian counterpart Robert Fico and explore new avenues of cooperation. On the third leg of

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमेरिका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगे। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
3: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: इस बीच विदेश मंत्रालय ने कहा है कि लियाकी फ्रीडम जहाज में भारतीय नाविकों के जान गंवाने की खबरें फर्जी हैं। मंत्रालय ने बताया कि जहाज के कप्तान से इस बारे में संपर्क किया गया है और कप्तान ने बताया है कि सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने लोगों से ऐसे फर्जी दावों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। प्रस्तावित समझौते के अंतर्गत ईरान को समृद्ध परमाणु सामग्री को हटाना होगा, अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी नष्ट करना होगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों की आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों ने यूरोप को मध्य पूर्व से तेल खरीदने के लिए मजबूर किया, जिससे भारत को अन्य किफायती विकल्प तलाशने पड़े। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार ने और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व महानिदेशक मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमान सिद्दीकी ने किया। अगला सम्मेलन इस वर्ष नवंबर में ढाका में आयोजित किया जाएगा। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि भारत को यूरेशिया के ऐतिहासिक और सभ्यतागत साझेदारों से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के ढांचे से प्रेरित है। श्री सिंह ने कहा कि इस दृष्टिकोण में मध्य एशिया का महत्वपूर्ण स्थान है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच की मेजबानी करेगा। दक्षिण कोरिया में सियोल अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने का दोषी पाया। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हरा दिया है। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ था। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में मेजबान इंग्लैंड ने श्रीलंका को 87 रनों से हरा दिया है। बर्मिंघम के एडबेस्टन में पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 219 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 132 रन पर ही सिमट गई। भारत का पहला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने खाड़ी में भारतीय तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। ईरान के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अमरीका ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर सहमत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप डी मुकाबले में अमरीका ने पराग्वे को 4-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स, जिसमें आपकी दिल की बातें करने के लिए मैं हूं आपके साथ भावना। लीजिए पहला संदेश आ गया है। सुप्रीम नमस्कार जी, फिल्म का नाम है नाम। ओके, ये डोंडी लोहारा बालौत छत्तीसगढ़ से हमें संदेश

मिला है, देव शंकर तामुरिया है, अजय देव तामुरिया है, तुषार देव तामुरिया है, डॉली बेबी पूजा तामुरिया है, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया है और मास्टर अल कबीर भी इनके साथ हैं। बहुत ही बहुत आपका स्वागत, पहला संदेश आपका, और लीजिए इस संदेश के साथ आपका संदेश भरा फिल्म नाम का ये गीत।

आप सबके पे चिट्ठियां आ रही हैं ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप पे आपका संदेश आ रहा है। अपना ईमेल एड्रेस तो हमने बताया ही नहीं। अरे ईमेल आईडी हमारा नोट कर लीजिए, वो सब जिन्हों के पास नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी है हम जानते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। तो फिर आपके संदेश कहाँ छुपे हैं, जल्दी से भेजिए। ये हमारे पास गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से संदेश आया है।

तुलसी मस्कीन है, वीना मस्कीन है, आशीष राजा है, चैतन्य मस्कीन है, मेघा मस्कीन है, और इन्होंने साथ में लिखा है चंडीगढ़ से भी जुड़े हैं लोग, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तो इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सईद अब्बासी साहब हैं, उनका पूरा परिवार है हमारे साथ, ये हमारे साथ ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। इनकी निगहत परवीन अब्बासी जो हैं वो हैं, शाहनवाज अब्बासी हैं, सरफराज हैं, फरदीन हैं, सुहान हैं, इसके अलावा अरजान हैं, अबान हैं, और पूरा अब्बासी परिवार हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़ा हुआ है। सतीश अनेजा जी भी हैं, और चंडीगढ़ से इनका संदेश हमारे पास आया, बिमला अनेजा जी भी साथ में हैं, राम नरेश चिक जी हैं, राम नरेश चिक हैं, इनके साथ रेखा चिक हैं, करण हैं, अल्पाश हैं, रघु यादव, रचना यादव, सृष्टि यादव, सावी यादव, संगम विहार हनुमान मंदिर दिल्ली से इनका संदेश हमारे पास आया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डी के साहब जो है इनका भी संदेश हमारे पास आया है, ये लिखते हैं, तुम्हारी यादों के झोंके मुझे सोने नहीं देते, भिगा देते हैं पलकों को मगर रोने नहीं देते, मैं अक्सर भूल जाता हूँ जरूरी काम सब अपने, वो बीते पल मुझे तुमसे जुदा होने नहीं देते, जैसे आकाशवाणी रेडियो। ये इन्होंने पूरा लिखकर भेजा है, नई दिल्ली से इनका संदेश हमें मिला है, कमलेश, मुकुल, सचिन, दीपांशु, इन्होंने अपनी पसंद का गीत भी हमें लिखकर भेजा है, हमारी कोशिश रहेगी सुनवा दें। इसके अलावा परिहार परिवार का भी हमारे पास जो है वो संदेश आया है, पूजा परिहार हैं भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अंकित कांगड़ा हैं, अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा, हरियाणा से इनका संदेश हमारे पास आया, हरियाणा में कहाँ से जी, ये तो लिख के नहीं भेजा आपने। अनिल मोहन जी भी हैं, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, ये सब हैं, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा सुदर्शन मुखी साहब हैं, इनका भी संदेश हमें मिला, इन्होंने ईमेल हमको किया है बहुत ही प्रेम के द्वारा, और हम भी इनका स्वागत करते हैं उतने ही प्रेम से। बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल उत्तम नगर दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं, और गाना सुनना चाहते हैं ये वाला।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
5: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।

फिल्म प्रेम ग्रंथ का ये गीत सुनना चाहा था जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा जी ने, उनके सभी साथियों ने। इसके अलावा हमारे पास जो संदेश आया ना वो है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख की, सब है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इनका संदेश हमें मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा संदेश पहुंचाने के लिए। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव और छत्तीसगढ़, मतलब ये छत्तीसगढ़ से हमें बहुत ही प्यारा सा संदेश मिला है। इसके अलावा कीर्ति का संदेश हमें मिला है तिलक नगर दिल्ली से, कहती हैं फाफा जी आपका प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है, आकाशवाणी हमारी जान है, हमारी धड़कन है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा जी आपकी पसंद का गीत।

वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान, इन सबका हमारे पास संदेश आया है। ये हैं अनूप कौर और सरोज बंसल जी, गुरुग्राम से इनका संदेश हमारे पास आया है। नाइस प्रेजेंटेशन एंड नाइस सॉन्ग्स यू आर प्लेइंग, ये लिखकर इन्होंने हमें भेजा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा रुपेश संघई हैं, महेश संघई हैं, इनका संदेश हमें परभणी महाराष्ट्र से मिला है। प्रवेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा लिख रहे हैं ये। इसके अलावा आमिर हुसैन साहब हैं, बहुत ही प्यार भरा आदाब, ये मेरा नाम लिखकर भेजा है इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा देखिए सबके नाम पढ़ देते हैं। आमिर हुसैन है, बेगम तैयबा शेख हैं, फौजिया शेख हैं, आहिल हुसैन हैं, अरहान हैं और परिवार के सभी सदस्य हैं। ये पटियाली रोड गंज डुंडवारा से इनका संदेश हमारे पास आया है। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, बहुत ही प्यारा और छोटा सा संदेश इनका आया है श्रीमाली परिवार का। कवर कॉलोनी बड़वाह, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से। और आशा नारंग, सुरेश नारंग, सैयद मसरूर सहारनपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं, गाना सुनना चाहते हैं, बहुत ही प्यारा सा गाना है ये रहा। फिल्म का नाम है ना खुदा।

चलते चलते एक बहुत ही प्यारा सा संदेश आया है गांधी चौक वार्ड में राजस्थान से बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं, मनीष पवार हैं, रामदेवरा से दिनेश चौहान हैं, बाबूराम जयपाल डांगरी से हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा हैं, ये अपने आप को रेडियो दीवाना कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना प्यार भरा संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, इन्होंने ये लिखकर भेजा है, अपनी फरमाइश भी लिखकर भेजी है, लेकिन आज तो समय हो गया है इसलिए आज आपकी फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसे ही हमें ईमेल या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हमसे जुड़े रहिए, संदेश भेजते रहिए, आपकी फरमाइश भी पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी हमारी। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार, मैं कहीं नहीं जा रही। 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इसका उद्देश्य इन दोनों यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री कल फ्रांस के नीस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी दक्षिण फ्रांस में भारतीय समुदाय से भी भेंट करेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी स्लोवाकिया जाएंगे। वे स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ आपसी सहयोग पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में 21 जून को नीट पुनर्परीक्षा की

तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार 5वें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुई। लॉस एंजल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ने पैराग्वे को 4-1 से हरा दिया। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को 21-6, 21-9 से मात दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम हर बार एक अलग जगह आपको लेकर चलते हैं, खूबसूरत जगह आपको लेकर चलते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस पंक्ति में ना बहुत गहराई छिपी है। हम भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, कहीं की भी तस्वीर बनाएं, पूरे भारत की जो सुगंध है उसकी झलक, उसकी खुशबू हमारे साथ चलती है हर प्रोग्राम में, हर बार। मैं हूं आपके साथ भावना, और आज जहां हम जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब रेडियो

तस्वीर बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो ऐसी जगह है जहां गर्मियों में घूमने के लिए हमेशा से लोग आते रहे। ब्रिटिश शासन के समय में भी ये जगह उतनी ही लोकप्रिय थी और आज भी ब्रिटिश वायसराय भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके में आते थे। औपनिवेशिक काल की झलक के साथ साथ विशिष्ट पहाड़ी वातावरण, ये मिश्रण इसे दूसरे पहाड़ी जो इलाके हैं उनसे अलग बनाता है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, तो आइए मिलकर चलते हैं।

हम तो चले कहाँ, टाइगर हिल, दार्जिलिंग की टाइगर हिल से सूर्य उदय देखना बहुत ही खूबसूरत लगता है। उगते सूरज की खूबसूरत नारंगी आभा के साथ साथ कंचनजंगा की पर्वतमाला का भव्य मनोरम दृश्य, इसकी कल्पना करके देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये ना पूरा जो क्षेत्र है इसके आसपास प्राकृतिक वन अभयारण्य है, और यहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर वेधशाला है। सूर्योदय देखने का समय जो है ना सुबह लगभग 4 बजे होता है, और आमतौर पर लोग क्या करते हैं, मफलर, स्कार्फ, ऊनी टोपी, मंकी कैप और भारी जैकेट पहने हुए ठंड से कांपते हुए एक साथ जमा हो जाते हैं और सूरज को निकलते हुए देखते हैं। और मुझे सब लोग एक साथ वो देख रहे होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं ना कि हाँ अब हल्की हल्की शुरू हो गई है किरणों का निकलना, बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख रहा है, मतलब वो चीज एकदम अलग तरह का एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत लगता है। और धीरे धीरे जब सूरज क्षितिज से बाहर निकलता है, नजारा बेहद खूबसूरत होता जाता है। सूर्य की किरणें पहाड़ों को रंगों से भर देती हैं, क्योंकि कंचनजंगा की पर्वत माला जो है वो पूरी किरणों के रंग से सुनहरी सुनहरी दिखाई देने लगती है, बहुत खूबसूरत। जो फोटोग्राफी करने के शौकीन है ना, उनके लिए तो एकदम स्वर्ग के जैसी जगह है ये। वो सुबह 4 बजे अपने कैमरास लेके पहुंच जाते हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक, ऐसा लगता है कि बस कहीं ना जाएं, यहीं रुक जाएं, ठहर जाएं, रुक जाएं, आगे ना बढ़े, बस यहीं इन नजारों को निहारते रहें।

अगर आप ट्रेकिंग या पर्वतारोहण के शौकीन हैं ना तो ये जगह आपके ही लिए है, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान और दार्जिलिंग चिड़ियाघर। पता है ये एक संस्थान के साथ साथ एक हिमालयन मिनियापोलिस, ये एक साथ कई चीजें समेटे हुए है, संग्रहालय है, बोर्डिंग स्कूल है, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी है, साथ ही स्मृति चिन्हों की एक दुकान भी है यहाँ पर। तो बहुत चीजें एक साथ देखने को आपको मिल जाएंगी। संग्रहालय में जो पर्वतारोहण के लिए सारी चीजें जो जरूरी होती है ना, उपकरण, कलाकृतियां, वो सब यहाँ पर भरी पड़ी हैं। और ये संग्रहालय है दो प्रसिद्ध पर्वतारोही, तेंजिंग नावे और सर एडमंड हिलरी, इनको श्रद्धांजलि के रूप में देने के लिए बनवाया गया था। 1953 में एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी, एवरेस्ट के ऊपर। बोर्डिंग स्कूल उन छात्रों के लिए जो पर्वतारोहण का अध्ययन करना चाहते हैं, और चिड़ियाघर यहाँ का दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है ये। यहाँ पर साइबेरियाई बाघ को आप घूमते हुए देख सकते हैं, हिम तेंदुए को शांति से सोते हुए आप देख सकते हैं, दुर्लभ लाल पांडा भी यहाँ अक्सर आपको दिखाई दे जाएगा, बहुत सारे चमकीले और सुंदर पक्षियों की प्रजातियों को देखने पर्यटक यहाँ आते हैं। क्या कहना है इस जगह का, बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा दार्जिलिंग का रॉक गार्डन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर जलप्रपात है, चट्टानी ढलानों से नीचे गिरता हुआ पानी नीचे गिर रहा है, और वहाँ पर बहुत सारे बेंचेस हैं, आप बेंचेस पे बैठकर पूरा नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मोहित करेंगी, और उनमें से एक है बादलों की लुका छिपी। यहाँ पर ना एक पल आप अगर गाड़ी के शीशे के सामने बादल छाए होंगे तो आपको ऐसा लगेगा बस आप बादलों में ही अपनी गाड़ी लेकर अंदर जा रहे हैं, और कुछ ऐसा भी लगता है कभी कभी कि बादल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहे हैं, ऐसा महसूस होता है देखकर। यहाँ पर झरना है, शांत लय में नीचे गिरता है, बहुत खूबसूरत झरना है। जब नीचे जाते समय ना आप देखेंगे उसको तो ऐसा लगेगा शांति सुकून, और मौसम के अनुसार यहाँ पर चमकीले सुंदर फूल खिलते हैं। बगीचे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, जो इस गार्डन के जिसकी हम बात कर रहे हैं, रॉक गार्डन। यहाँ का सबसे खूबसूरत जो हमें लगा, जो आपको भी लगेगा ना, बादलों का लुका छुपी खेलना, कभी बादल सामने, कभी आंखों से ओझल, कभी लगा थोड़े ऊपर चढ़ गए और कभी लगा ये बादल नीचे की ओर जा रहे हैं।

दार्जिलिंग रोपवे जो है ना, वो भी बहुत बहुत मशहूर है बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी। सिंगामारी वो जगह है जहां से आपको रोपवे में चढ़ना होगा, दार्जिलिंग रोपवे में। और इस रोपवे को ना रंगीत घाटी यात्री केबल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये आपको छोटी रंगीत नदी के किनारे फैली घाटी जो है उसका शानदार हवाई दृश्य है। यानी आप ऊपर केबल में, रोपवे केबल में बैठे हैं और नीचे से आप इस शानदार घाटी का हवाई दृश्य देख रहे हैं। केबल कार से ना हरे भरे चाय के बागान, दार्जिलिंग है तो चाय की बात तो होगी ना, है कि नहीं? चाय के बागान, उफनती नदियां, घने जंगल, झरने, इन सब के खूबसूरत दृश्य को देखते हुए चलते हैं। और 45 मिनट में ना 7000 फीट की ऊंचाई से 800 फीट नीचे तक आसानी से उतर जाते हैं। रोपवे से उतरकर आप चाय के जो बागान हैं उनका भ्रमण कर सकते हैं, चाय की पत्तियां तोड़ती हुई महिलाओं को देख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा और जो खास चीज आप देख रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं दार्जिलिंग में, यहाँ का बतासिया लूप बहुत ही फेमस है। मतलब बतासिया लूप को ना खास तौर पे टॉय ट्रेन के लिए एक आसान ढलान के रूप में बनाया गया था, ताकि घूम स्टेशन पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतर सके। ये जो ढलान था पहले 100 फीट का था, और टॉय ट्रेन जो है वो आराम

कम सी इस ढलान का जो रास्ता है वो तय कर लेती थी, बहुत मुश्किल नहीं होता था। और इस तरह से बतासिया लूप टॉय ट्रेन के लिए एक आसान रास्ता बन गया था। और ये जो बतासिया लूप है, ये लूप एक सुंदर उद्यान के चारों ओर बना हुआ है, गोलाकार रेलवे ट्रैक है, मतलब पूरा उद्यान है, बगीचा है, फुलवारी है चारों तरफ, बीच में जो है ये लूप है, गोल गोल लूप। कई प्रकार के फूल यहाँ पर हैं और बहुत खूबसूरत लगता है जब गोल गोल ये टॉय ट्रेन जो है वो घूमती है फूलों के आसपास। और इतने खूबसूरत फूल हैं यहाँ पर जिसे आप कह सकते हैं कि जिनको देखना, जिनकी खुशबू महसूस करना, लेना बहुत ही एक अलग प्रकार का खूबसूरत और अनोखा अनुभव आपको आएगा, बहुत प्यारा।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
2: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
1: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
2: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
1: और बिना सू क्या मिलेगा?
2: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
1: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
3: सौदशमलवेक में कहा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। ये है प्रोग्राम तस्वीर, जिसमें हम तस्वीर बना रहे हैं दार्जिलिंग की। यहाँ का घूम मठ बहुत खूबसूरत, भव्य वास्तुकला, 15 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की प्रतिमा, जहाँ अनादि काल से बुद्ध की प्रतिमा के सामने हर साल 2 तेल के दीपक जलते रहते हैं। महाकाल मंदिर बहुत अत्यंत पवित्र, जिसे कहा जाए तो कम ही लगेगा, भगवान शिव को समर्पित है ये पवित्र मंदिर। और जिस मंदिर पर ये है उसे पवित्र पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का सबसे रोचक पहलू ये कि यहाँ वेदी पर एक हिंदू पुजारी के साथ साथ एक बौद्ध भिक्षु भी विराजमान है। तो बहुत ही खूबसूरत और अनोखा है पश्चिम बंगाल का हमारा दार्जिलिंग, जहाँ हम और आप चल रहे हैं और बना रहे हैं रेडियो तस्वीर।

चल के हम पहुंच गए संदकफू। संदकफू या संदकफू भी इसको लोग कहते हैं। 12,000 फीट की ऊंचाई पर है और पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है ये। यहां पर आपको रोडोडेंड्रॉन के फूल पूरी तरह खिले हुए दिखाई देंगे। मार्च से मई और अक्टूबर से दिसंबर के बीच ये चोटियां अपने पूरे शबाब पे होती हैं, खूबसूरत रंगों से रंगी हुई होती हैं। और यहाँ पर आप सूर्योदय सूर्यास्त के जो नज़ारे हैं बहुत खूबसूरती से देख सकते हैं। यहाँ पर ना ट्रेकिंग भी कर सकते हैं आप, अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सबको आके। इसके अलावा मिरिक है, दार्जिलिंग से लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा, 50 के अंदर अंदर ही है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर आप अपनी प्राइवेट कार से या फिर जीप से या फिर यहाँ से आप टैक्सी लेकर भी पहुँच सकते हैं, 2-2.5 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लगता, पास में ही है। और पता है यहाँ पे जो मिरिक झील है उसके लिए इसको जाना जाता है, लोग यहाँ पर आते हैं यहाँ के प्राकृतिक वातावरण को देखने, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और मिरिक झील जिसे सुमेंदु झील भी कहा जाता है। इस झील के ऊपर ना एक पैदल पुल बना हुआ है जिसे इंद्रधनुषी पुल के नाम से जाना जाता है। सब कुछ घूमने के बाद खरीदारी भी तो करेंगे ना आप, कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, परिवार वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और पड़ोसियों के लिए भी। या आप यहाँ की मॉल रोड जा सकते हैं, दार्जिलिंग की मॉल रोड जो है, यहाँ पर आपको बेहतरीन डिज़ाइन वाले कालीन मिल जाएंगे, हाथ से कढ़ाई किए हुए शॉल मिल जाएंगे, नकली गहने आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत। और इसके अलावा अनोखे डिज़ाइन वाले ऊनी सामान और मुखौटे यहाँ पर आप लीजिए, एक से एक मुखौटा आपको मिलेगा। लगाइए, लोगों को डराइए या चौंकाइए या फिर प्रसन्न कर दीजिए मुखौटा लगाकर, और फिर उसे हटाकर अपना चेहरा दिखा दीजिए।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
3: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
2: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
3: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
2: और विनर्स को क्या मिलेगा?
3: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
5: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

कलिम्पोंग यहाँ के गिरजाघर, यहाँ के मठ देखने लोग आते हैं जो दार्जिलिंग आते हैं। इसके अलावा कुर्सियोंग, जिसे सफेद आर्किड का स्थान भी कहा जाता है, यहाँ पर भी दार्जिलिंग घूमने वाले लोग आते हैं। 32 किलोमीटर दूर है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है ये। और इसके अलावा लावा, ये दार्जिलिंग से 148 किलोमीटर दूर है लगभग लगभग। यहाँ पर प्रकृति की खोज के लिए लोग आते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रकृति प्रेमी आते हैं यहाँ का उद्यान देखने, यहाँ को करीब से जानने। रोहिणी सिलीगुड़ी के नज़दीक है, 66 किलोमीटर दूर है दार्जिलिंग से। यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के जंगल देखना, यहाँ दुधिया नाम का एक पिकनिक स्थल है, यहाँ पर घूमना, और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को करीब से देखना, पर्वतमालाओं को देखना, यही लोगों को सबसे ज्यादा भाता है। बहुत ही खूबसूरत है हमारा दार्जिलिंग।

12:10 पर घर आंगन आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। अभी समय है समाचारों का, आप स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार, तब तक के लिए।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

डिग्री में गुजुक पे का दस संगी जरा सिरिस्तान जिने सल खानी लुगुन सना जाच कसता ठिनलेस डोलमा तंग ठिनलेस अंग में सल खानी लुगुन अंग सना जात

0: dasangi shirang lyrics na jats maje akashwani le ni shwat ni me chu chot chik chadu kasata akashwani dile ni sngol line dina yang testing ni ang regina nachul sana jat
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप्स को दुनिया भर से जोड़ेगा। यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि इससे यूरोपीय संघ के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। स्लोवाकिया यात्रा के बाद श्री मोदी फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि G7 में भारत की उपस्थिति भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाती है। ये लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है, जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। पेरिस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडिगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। समारोह में Sukhoi-30, MKI, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। उधर भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं हाईवे फिल्म से A.R. रहमान के आवाज़ में। गीतकार है इरशाद कमिल और संगीतकार है A.R. रहमान।

लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में अगला गीत शान उदित नारायण श्रेय घोषाल और साथियों की आवाज़ों में ओम शांति ओम फिल्म से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब सुनते हैं जावेद अली और जोजो सानू को अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म में। इस गीत को लिखा है इरशाद कमील ने और संगीत दिया है प्रीतम ने।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

अभी आप सुन रहे थे केके के आवाज़ में मेट्रो फिल्म से गीत। अगला गीत लीजिए, सुनिए सोनू निगम, श्रेया घोषाल के श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में सलामी इश्क फिल्म से। इस गीत को लिखा है समीर ने और संगीत से संवारा है शंकर एहसान लॉय ने।

प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

अभी आपने सुना लगन फिल्म से गीत उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ में। कार्यक्रम में अगला गीत लीजिए, सुनिए मोहित चौहान और नेहा बेसन की आवाज़ों में फैशन फिल्म से। गीतकार है इरफान सिद्दीकी और संगीतकार है सलीम सुलेमान।

फिल्म गीतों के इस कार्यक्रम के अंत में फौजी भाई सुनेंगे राज फिल्म से गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है नदीम श्रवण ने।

0: ngasi akashwani le ni shot nimi chu chu chik tang skar mang chu chadu kasata tu chu cha biggest thing ni akashwani dili ne smulla urdu na na sul chu chu ni se ka mid day news tang ni tang skar ma chu ka dopher samachar sanaja
1: आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके इस दौरे से फ्रांस के साथ इक्तिसादी और सकाफती रिश्तों को तकवियत मिलेगी और स्लोवाकिया के साथ बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। वजीर आजम मोदी फ्रांस में एवियों में ग्रुप 7 की छोटी मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों का खैर मकदम किया और कहा कि पहली बार 9 खातून कैडेटों के इस परेड में शामिल होने से जाहिर हो जाता है कि भारत खवातीन की जेर क्यादत तरक्की की राह पर गामजन है। भारत ने खलीजी खित्ते में एक तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी बहरिया की कार्रवाई पर अमरीका से सख्त एहतजाज किया है। कार्रवाई के दौरान 3 भारतीय जहाजी मारे गए थे। भारत की फजाइया का AN-32 तैयारा आसाम में फजाइया के जोरहाट स्टेशन पर हादसे का शिकार हो गया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी से कबल अपने पैगाम में जनाब मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के स्ट्रेटेजिक विजन में फ्रांस का खास मकाम है। जनाब मोदी ने कहा कि दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के दरमियान इक्तिसादी और सकाफती ताल्लुकात के फरोग पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह भारत इनोवेटिव का इफ्तिताह करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि ये तारीखी तकरीब भारत फ्रांस की इख्तिरा के साल के पस मंजर में मुनक्किद हो रही है। उन्होंने मजीद कहा कि इससे भारत के सबसे ज्यादा पुरअज़्म स्टार्टअप्स का आलमी सरमायाकारी से राबता कायम होगा और भारत के आला तालीम के इको निज़ाम से उभरने वाली इख्तिराआत में बड़े पैमाने पर रफ्तार पैदा होगी। इस तकरीब के बाद कल वजीर आजम 2 रोजा दौरे के लिए नीस से स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि इस तारीखी दौरे में दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में हुई पेशरफ्त पर तवज्जो मरकूज रहेगी। वजीर आजम ब्रैटिस्लावा में स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलिग्रिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी ने बताया कि इस दौरे से भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तेजी आएगी और स्लोवाकिया ईयू का एक अहम रुकन है। स्लोवाकिया के अपने दौरे के बाद जनाब मोदी इवियान फ्रांस जाएंगे, जहां वो इस महीने की 16 और 17 तारीख को G7 समिट में शिरकत करेंगे। बिलाखिर वजीर आजम का दौरा 18 जून को पेरिस में अख्ताम पजीर होगा, जहां वो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह वीवा टेक 2026 में शिरकत करेंगे। अक्षित की रिपोर्ट के साथ मैं असगर अली।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दो मुल्कों के दौरे के तहत आज शाम फ्रांस के नीस पहुंचेंगे। भारतीय वक्त के मुताबिक रात के 10:30 बजे वजीर आजम के वहां पहुंचने का इम्कान है। फ्रांस के दौरे के दौरान वजीर आजम एवियों में G7 छोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक तआवुन को मुस्तहकम करने के मकसद से दो तरफा मुलाकात भी करेंगे। बाद में वो स्लोवाकिया का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ अहम शोबों में फरोग के ताल्लुक से वहां के कायदीन से मुजाकरात करेंगे। वजीर आजम की आमद से कबल भारतीय बिरादरी स्टार्टअप्स के बानियों और कारोबारी अफराद ने इस दौरे पर गर्मजोशी का इजहार किया है। तवक्को की जा रही है कि इस दौरे से भारत और यूरोप के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वसी तर तैयारियां की गई हैं और भारतीय बिरादरी उनसे मिलने की मुंतजर है।
2: भारत और फ्रांस के दरमियान अवामी सतह के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। तकरीबन 10,000 भारतीय तलबा फ्रांस में जेर तालीम हैं, जिसे 2030 तक 30,000 तक पहुंचाने का हदफ है। फ्रांस ने भारतीय नौजवानों के लिए मुतअद्दिद नए मौके फराहम किए हैं, जिनमें 5 साल स्कैंगन वीज़ा और तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 साल का वर्क परमिट और 18 से 35 साल की उम्र के नौजवानों के लिए यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शामिल है। आकाशवाणी से बात करते हुए फ्रांस में भारत के सफ़ीर जनाब संजीव سنگلہ نے کہا کہ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی فوج نے آج اپنے 481 نئے افسروں کا خیر مقدم کیا، جنہوں نے اتراکھنڈ میں دہرادون میں واقع انڈین ملٹری اکیڈمی میں اپنی تربیت پوری کی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے 158ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ ان افسروں نے اپنی سخت محنت اور جانفشانی کے ساتھ فوجی تربیت کامیابی کے ساتھ پوری کی ہے۔ ان افسروں نے فوجی جذبے، لگن اور ڈسپلن کی مثال پیش کرتے ہوئے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس سال کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تاریخی نوعیت کی پریڈ تھی، کیونکہ اس میں پہلی بار مرد کیڈٹوں کے ساتھ ساتھ خواتین کیڈٹوں نے بھی حصہ لیا۔ اس شاندار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ مرمو نے کہا کہ وہ نو خاتون کیڈٹس کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ یہ نہ صرف بھارت کی دفاعی افواج کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے، بلکہ خواتین کی زیر قیادت بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک باعث فیضان مثال بھی ہے۔
3: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھارتی فضائیہ میں نئے بھرتی ہونے والے افسروں پر زور دیا ہے کہ وہ بدلتے ہوئے سیکیورٹی ماحول میں سیٹلائٹ اور ڈرون سمیت نت نئی ابھرنے والی جنگی ٹیکنالوجی سے خود کو ہم آہنگ کریں۔ انہوں نے یہ بات حیدرآباد میں فضائیہ کی اکیڈمی میں 217ویں مشترکہ گریجویشن پریڈ میں شامل افسروں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
4: راڈار، سیٹلائٹ، ڈرون، سینسر اور روبوٹکس جیسے انیک سسٹمز آج کے یدھ میں ڈپلوائے ہیں، جن میں نہ تو فائٹر کا پتہ چلتا ہے نہ اس کی مشینری اور اکوپمنٹ کا، اور آج وارفیئر کی ڈیفینیشن کافی حد تک بدل چکی ہے۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ کے ٹریننگ پروگرامز اور ایکسرسائزز میں آپ کو انسرٹنٹی اور انایکسپیکٹڈ چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اچھی طرح تیار کیا گیا ہے۔
1: بھارت نے امریکی بحریہ کے ذریعے خلیج میں کیے گئے ان حملوں پر سخت احتجاج درج کیا ہے، جن میں 3 بھارتی عملے کی موت ہو گئی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے بات کی اور کہا کہ تجارتی بحری جہازوں پر اس طرح کی جان لیوا کارروائیوں کو صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عمان ساحل کے قریب پلاؤ کے جھنڈے والے ٹینکر ماؤنٹ سیٹابیلو پر امریکی حملے میں عملے کے 3 بھارتی اراکین کی موت کے کچھ دنوں بعد یہ بات چیت ہوئی ہے اور نئی دلی کے سخت رد عمل کی وجہ بنے ہیں۔ امور خارجہ کی وزارت نے آج بتایا کہ بحری جہاز لیاکی فریڈم میں بھارتی جہازدانوں کی موت کی خبر صحیح نہیں ہے۔ وزارت نے بتایا کہ اس

0: में भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवाटेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
3: इन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग Security challenges, technological advances and complex global environments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
2: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
4: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय है, जिनमें ना तो फाइटर का पता चलता है, ना उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
1: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य

0: सवार थे, इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये 3.48% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच समिति गठित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि वह अमेरिका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
2: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमेरिका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय

0: हाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Așe, acasă fani le neșuat, nimic ce tot nici n-am petcatu, ca să ta lyric Sanchez la pulin. În ascun la țirin stanzine salcane, lubo sănătate.

0: डिग्री में गुजुक पे का दर्शन ही जराए सिरिंस्तान जी ने साल खाने लुबो सना जाच
1: बदलो मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
4: जी,
3: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
4: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
3: पर ये होगा कैसे?
4: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
3: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
4: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
3: बस
4: बस
3: समझ गया।
4: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।
2: टशी डोल कर दूं टोपा कोरंग ने सलकने इलुबांग सरजात

0: Tevikhet ena ngati khali individually ka effect met kya kurang patient ngala ya kurang kabe nena tevichik pe ka effect met kya tevijaste consequences ma mangpoi ho suno chale tevikhet ena ngati ek to patient khura ka effect wano nispa khet ena ngati parents gunika family ka wano le sumpa khet ena ngati community ka wano tangati guma individual ekalta na khura ka chi dugze na halale khura ka chi effect po dug ya khura ka chi dugze na even a nisut kekle ek to physical health ka issue anukle ek mental health ka ngata issue anukle physical health ka jena jese for example chi chi kata chang na kya khala le chang thung che space jeste liver ka khete na kon effect ma mo po khala jese ngata iv drug user uno to injection use cho to te guni khete na ngata hepatitis jene anukle khala le hepatitis b c ya khete na ngata ata hiv una da sa mane le una lepte duk sa no le hiv ata chi fe no zuna ngata ek dusse ka needle ngata share cho chi chi injection tans de yang chi chi tans pa chi chi ko infected ma chi yang chi chi ma
1: wan justice
0: hinal te wono le te individual ka ko effect ko no
1: kasa
0: ba ke plus ke tera drug e withdrawal e jaste ngata chi chi effect wono withdrawal e khorang symptom ngata drug po thoba me chi te we effect khorang ala ka
1: kasa
0: hala jese chang no le chang ata chi ta continue lo chu chu ne chang ne ni nyu na chang ngata che te nang otv effect chi yut kya sana achanak se ngata chang ban chu se treatment ma tang na ngata
1: kasa
0: main ta no chang ban chu se ngata te vi kete no treatment tang sala le te treatment mu mathop na ha chang a kete no chang cha da chi hala treatment chi ro sa ro jash kar mu ngata la te chi pata yut mi chang cha tang du cha des te ngata treatment mu ne na mane na chi kata seizure wan no le mirgi chu sna pa wan no le ते वो कहते हैं ना आता है कहते हैं ना और जो है वो आता है यंग इस उपचार में चले डिलीरियम ट्रेमेंस है ना ते डिलीरियम ट्रेमेंस वो कहते हैं ना साइकेट्री ना आता है इमरजेंसी कंडीशन थी उनके ये हो गया लेकिन आता है इंडिविजुअली का चीची इफेक्ट हुआ ना उधर कान बहाल आले तांग आती कहते हैं ना फैमिली का ची इफेक्ट हुआ ना फॉर एग्जाम्पल ले हाउस होल्ड चीना यूथ क्या कहता है हस्बैंड वाइफ ना टू यूथ क्या करोगे तो हस्बैंड बेचांग में ना डोमेस्टिक वायलेंस हालांकि खुरंग नमा मकपाई इसके ना जिंगमो छाचेस दिमाग में भी जब ठू छिनमो छिनमो छिनमो छाची ते वो खो खो ना सामान खा अबे छंग नेंदुक ते कॉमन सुखी छंग की छंग वो कहते ना कि मतलब सोशली एक्सेप्टेड एडिक्शन जी सुखी दुख की इन मनो हालात चले कि ये है तो और जो है वो छंग की वजह से जो है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट छंग चिपकुंगे मिजरी आले कि बाकी ड्रग्स ने ना चीखे थे ना एक तो खुरा ओवर डोज से जैसे डोसेज हेल्थ इश्यूज से प्रॉब्लम चेचेस निस पर कहते रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मामा पोचा छंग इंडो या बाकी सब्सटेंसेस ने इनते उठो ते वे जैसे दक्षा कहते रंग इस गता कहते ना ची इश्यूज उन दुख लीगल इश्यूज क्रिमिनल इश्यूज हल गता है
1: ये तो रंग आता है जिस तनो पा
0: रिसेंटली गता इंसिडेंट ची सुन तनो हल ले तो उसकी वजह से गता कहते ना गति हर एक पे जो है वो गता इफेक्ट छानो
1: कसा
0: अब ये ना एज ए रोल ची चीन हो सकते एज एज ए साइकेट्रिस्ट ना ये चीज रोल एज ए फैमिली ची रोल जी प्ले चो सनो एज ए कम्युनिटी ने गाता ची ची रोल क्या हर किसी का गाता अलग अलग रोल है ना एज ए साइकेट्रिस्ट गा एज ना कि साइकेट्रिस्ट से लास्ट बोखली गाता मेडिसिन जिकता उसके नशा जोते कि हाँ डिटॉक्सिफिकेशन से हाले या खून लते वे सब्सिट्यूशन ची चिकता मन मन हला ले ते चिकपो मन ते उन्हें यंपो एक तो हमने गाता है मेडिकेशन था वो मत चंग मजे रंगाई डायग्नोस चौन कि हाँ कि खो जैसे जैसे नशा चिक चिक ने ना चिक ये नहीं है चले कि छंग जी ने तो बस उसको अल्कोहल यूज डिसऑर्डर खाली है एक नशा ने ना चिक खचिक तिजुक चाहूँ दो कि नशा ने तो सिगरेट आंग थूं दो यंग बाकी जो है वो ओपियड यूजर पोली सब्सटेंस यूजर तो खाला ले तेने ते उंगा डायग्नोस चुचेस गुमा के तेना कि है क्या उसको चीज मो दो बिल्कुल है चले का जो मो दो आई डायग्नोस चुनो तेने ते वजन नो डायग्नोस ना असेसमेंट चुस्ते आई डायग्नोस चुचेस सेकंड कहते ना कौन ला एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बो चीज थुचेस दुख जैसे मेडिकेशन उतना हला ले डिटॉक्सिफिकेशन जाना निस्पा कहते ना गाता आई चुनो ले मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी जेन जाने के लिए एक तो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तानो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट तानो ते वजन मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी
1: बिल्कुल साल ते
0: मोटिवेशन गाता हला स्पेरा तंचेस की मोटिवेट चुचेस हला ले कुमा गाई गाई टीचिंग की जब पेशेंट जी हुआ ची हला ले कि अल्कोहल के मतलब चिक चिक चीज़ है ना कि अल्कोहल है फायदा नुकसान टेस्टिंग गुमा चपटी है चिका कि चीज़ हमारा चिक चीज़ है तो कि छांग फाँ उस दिन हाँ तेने छांग बोझा फाँ पता छा रुपी की मोटिवेटेड कितना है जर कंसो खाला चले की हाँ छंग फाइन छंग फाइन से तेने मोटिवेट समझे दू की थिंग ने रिलैप्स है चेस दूगा मेरू बाते होते पाए पता जैसे ये है फर्स्ट ले सेकंड मुख्य ते नंग अति के ते नंग फैमिली है फैमिली अंग आए लग जाता चेस की फैमिली है चम शी इंपॉर्टेंट रोल इन नो ट्रीटमेंट इफ या फैमिली खची गुंदुक ची हाँ क्यों उसके अगलांची हालांकि बहुत कम पेशेंट आता क्यों हमें रुकते हैं कि स्टिग्मा वे जस्ते वो ता छंग तुम कान जानो हाला नशा जो कान जानो हाला समते क्यों हमें रुक हाला ले क्यों नंग तेरे को ने पार या शो रिगो आज चिक तबरंग वाय छंग तुम नो तबरंग खेरंग नशा जो कान तेरे ते वो खेते नंग आता कम चुचिस ले क्रिटिसाइज चुचिस वो कम चुचिस फैमिली उन लोग आई ते लब जाता नो
1: छोकर बगिया ला जस्ते जाचिस फैमिली मेंबर को
0: बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि माँ मंगपो रीजन वो ते वांग दुक्का चले कि छंग अता कोई भी नशा नहीं थे उठो ठीक मन जोश क्या ठीक सों क्या रिलैप्स होते लग क्या रिलैप्स होते अजी कल बाजी वजह ची इनसे अची माँ फैमिली को हिजुक दे दू
1: कसा
0: कोशिश नहीं चूस देनो कि मगर कोशिश चो ना खेरंग छंग तुम वा खेरंग नशा नहीं कान वाज ते ते वो खेते ना अता मिसेस चेस क्रिटिसाइज में चोचेस देने गई फैमिली है साइको एजुकेट जर मोले रिगार्डिंग द इलनेस जिस गुमा यू जुमो ये नो मेंटल हेल्थ चीक इश्यू जी नो जर का मुआई चोचेस निस्पा खेते ना इवा ट्रीटमेंट बो खेते ना जैसे गाता है बाकी जुमो इंडो जैसे शुगर जी किंडो चीक चीक शुगर जुमे वो तो डो हाइपर टेंशन जी वो तो लोग काजू शिक ते वो ला इलाज है उस दो म्यूट ते वो ला खेते बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तेना चोस ला इवन ट्रीटमेंट बो और तो लॉन्ग रन इफ यार ताचे जरूरी नो इवन का तेने ते गुना जो कुल नजर चेस की इवन है चांसेस संग यूं शिचे सिनो रिलैप्स चाचे से यंग कोने नशा नैन शिचे सिनो तेने हिम्मत हरे मचा तेने कंटिन्यू उनका इलाज हला तेने कुल ते वहाँ चेस की हाँ कि अगर कौन रिलैप्स है ना ची ची साइन एंड सिम्टम्स हो यहाँ को रंग चिकपो दुख चेस तेना ग्रुप पेना चाचेस जाओ हाँ ला रॉक्स गम पारी कर दो ते उन थोड़ा चाचेस पेने मंगपो टू ने कने खेस टू ने अबा में कने खेस दुख बार बार पेने खेस चेस कोरंग चिकपो दुख चेस स्कूल ना ता टू स्कूल इन स्कूल अच्छा कर रही किन्ना ले परफॉर्मेंस इन स्कूल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन डिक्लाइन हो दुख तेन ते संग मा केता वार्निंग साइंस हो शुनो ते उन तो दिस ते फैमिली अम मा फ्रंटल रोल हो क्या लाइक क्रिटिसाइज में चोचेस कंटिन्यू फॉलो का बोचेस और मोटिवेट चोचेस मजे ला मनोते ने ते फैमिली होना ते वो यम पो चोचेस पो जरूरी नो ठीक निस्पा एज ए साइकाट्रिस्ट से ची यंग ची रोल इन ऑफ देना गता के तना हेल्थ कैंपेन चोचेस हलाले जगह जगह सोते कि एडिक्शन बो के तनो जुमो नो ना कि कहते हैं बैड कैरेक्टर जी के नजर करना मुझे एक्सप्लेन जो चीज़ क्योंकि जब तक एडिक्शन वो जुमो इनोक जैसे मी गुला पता माचा ना तब शिक इलाज शिकोने जो चीज़ मानो इनो पंगता जैसे डायबिटीज इंडो या हाइपरटेंशन इंडो ते उन्हें चीफ इनो गता दिमाग ना हल नेफाला होते नो इवो जुमो इनो इवो कहते ना गता मेडिकल कंडीशन जी नजर करना गता हल नेफाला पता सुन पला और बहुत इलाज एडिक्शन मुंगता है चीज सुनते नो इवो जुमो इन मानो ठुको क्यों पोनो या कौन है कौन ठीक में ते नो ते फेच उस ते नो जिसका मैं ओते होगा ती दिमाग ना ने थेंते कि ये एक बिल्कुल ले मेंटल ओते ये बात आंगे क्रॉनिक मेंटल इलनेस या मेडिकल इलनेस में जिन्दे ते होगा ये मेन रोल है हो गया लेकिन आता टू ही आता एज ए साइकाट्रिस्ट ही रोल इंडो एज ए पेरेंट्स ही रोल इंडो और एज ए कम्युनिटी द कम्युनिटीज ने जिन आता स्कूल रही नो खला स्कूल इनो ते गुने ची स्कूल गुने ची रोल इनो जेना कि मंग छा गता ड्रग्स कुंची फेने हो जेना कि पीयर प्रेशर इज जस्ते
1: कसा
0: एक रीजन इनो हलाल निस्पा कहते ना गती रीजन इनो ले एकेडमिक हलाल एक प्रेशर होनो स्कूल एग्जाम जी इंडो एग्जाम में प्रेशर इज जस्ते इंडो या हलाल ओ ते चोस गुन कहते ना गता कहते ना ई वजनो कि हम कोपिंग मैकेनिज्म हला हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म टी कजु चुन ठुगु गुन ला खेते ना ब्रेन बोते सम शिक डेवलपमेंट हुआ मंग छे खेते ना एडोलेसेंट गुने खेते ना एडिक्शन जोन खला ला तेने ते वो आता आइडेंटिफाई खोला जिस चीज की हाँ इवे खेते ना हेल्थ का इफेक्ट होता क्या इवे कॉन्सिक्वेंसेस को इवो नो खे नशा चोच आगे इवो छर कोने ब्रेन बोते सम शिक डेवलपमेंट में हर चीज कोने ट्राई चो जिस जोन ओके हाँ एक्सपेरिमेंट है कर लेते जर का सोसे हलाल तेने ते वे कॉन्सिक्वेंसेस गुने टून शचेस टीचर गुने लो स्कूल गुने स्कूल गुने कहते ना गता हेल्थ कैंप चोर गता हलाले रिगार्डिंग गता इन्ना चोला टल्टिक चोर जाचेस की एडिक्शन स्कूल ला प्रोग्राम रिचून बिल्कुल तेज तीन कहते ना सेकंड कहते ना गति कोपिंग स्ट्रेटजीज गुन कहते ना एग्जाम जी हुआ ची कजू के कोप अप चुन स्ट्रेस रिगो हुआ ची क्योंकि स्ट्रेस से जस्ट हम टू ने मा मा पो एडिक्शन ने तरफ सोंतो क्योंकि वो रिलैक्स फील करते जखन हलाले टू ने जिर दु ते फिया खोने जुक चोस्ते ते उन कोपिंग मैकेनिज्म कोपिंग स्ट्रेटजीज गुन गता है जो चीज हाँ कि पहले से टाइम टेबल एक बनाना है इजू इजू सेल अजू की चोज जिसका गुन ते हूँ गता है एक एज अ रोल यू नो और सेकंड जो है वो कम्युनिटी में नो गता है चाहे नेबर्स इंडो जो भी इंडो जजमेंट मिचुचिस और क्रिटिसाइज मिचुचिस हलाल कि खून जैसे ड्रग्स चिकची ने ना रिकवरी सोंग तो ना मगर ते अंगता ते ने अलता रूपा कि रिकवरी सोंग ते चंग पांसन दो या हीरोइन इंजेक्शन वगैरह यूज चुसे कोई पांसन दो मारते वो दिमाग लोस अच्छा कोते अच्छा ते नशा निंकान बनो है ता नस बिल कोते नशा निंकान बनो है खून ना पु मारूल है ठूं लगता है जो सोसाइटी ना एक्सेप्ट चुचिस पो जरूरी नो कि खून ना कि नहीं वो हट के नहीं है तेन्ना आते नो पल फियर ऑफ जजमेंट पे जस्ते खून मता आगे रूम मानो
1: कसा डॉक्टर शाइना ले तेने ता गता स्टिंगचुक पे काउंग ले नेरांग आई टेली मानस तंग डेलते मिमांग स्कूल ला जुलोन जिका जु सालिन तेने टेली मानस से रोक्स लेंचेस पो गता जोंशकेस गुन माचा पे गता मिमांग सुजिगि नंग का गुन लंगा था इवे रोक्स गो शेजोत हागो लमस्टोन दि गो शेजोत या इस को ला थेजुम योट ना ते गुन सेल थप्स जचेस इन ना तेने टेली मानस दक्सांग गता मोबाइल का गता फोन का गते जलता सालते तेने इ स्कालास गुन सेलचेस पिया नेजाने पुका जु डेल जात गोस तेने न्यामपो न्यामपो तेने गरा टेली मानस सी फंतोक्स लेंचेस बो मेमांस को निफिया जम शिकार्चन ने नोक्ते तेवेका तेंगेरा स्टिंगजो के जुलोन बो साला जाना
0: लास्ट पे कहेंगे तेना उसे नहीं आज ले कि मेंटल हेल्थ पोज़ है जिकल है जैसे गाती फिजिकल हेल्थ जम शी इम्पोर्टेंट है नो तेना चोला गाती मेंटल हेल्थ पंग मा इम्पोर्टेंट जिनो जैसे फिजिकल हेल्थ तेना तंग आता फिलोग ने पूरा थोड़ा नो कि हाँ इवा मेंटल हेल्थ पो तुझुक शी नो आता फिलोग नेता चिक मी परफेक्ट थोड़ा नो
1: थोमचेस में तेनो
0: तुंचेस मित क्या मगर ते वो तिन्ना ना बराबर इक्वल वेटेज बोरनो की कजू फिजिकल हेल्थ इन तिन्ना चुगला मेंटल हेल्थ पंगता है गुज़ दोनों तेने समतुम न्यान्ना मिगुन गोश कोते हेल्प निंचेस लिंगता है तेने गता है ठेल अतना की गता हाँ हॉस्पिटल अच्छा ना गता ची जज मिचो है चीज़ेरीन हलाल तेते फिर गता है
1: Spotlight degree minang ashkoda zate telemanas school la shabda zate spo ngin tapan etukje chi jule doctor le
2: dasa injere spotlight degree sanazat ngaje akashwani le jot pitogo chuchot ngana skarma sumchu sosum chaduk kasata flemiluric sanazat inas hunla lofer flemilu mohammad rafine sanazat लोरसुम कन आनंद बख्शी लुआंजरी कन लक्ष्मीकांत प्यारीलाल

फ्लेमिलू इटिक्रिमिना कसता छाया फ्लेमिलू लता मंगेशकर तंग तलात महमूद ने सनाजत राजेंद्र कृष्ण ने सुमस्कनी लुआयांग जिकन सलील चौधरी।

0: ngaji akashwani le ni jot pitogu chu zo tuk chadu ka sata akashwani de li ne skon la hindi ante sing ne angrezina natul gun sanazat
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनो

0: सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देश भर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेना अध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the 2 European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the 2 countries. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
3: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
4: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic.

0: 그래서
1: 그냥
0: 그래서
1: 직직 있나 주네 나고 아까 나고 갖다 성면사만 보고 갖다 줄리고는 그 시고 그냥 추죽 사노 빨래 얘네 보다군 보송 됐을 때 뭐네 때네 만에 라모나 보고 갖다 버딩제 나 갖다 테크닉 요트 노 야래 어때 버딩제 간에 이즈 피카 갖다 페먼 당시 때 시르카 오 닥사 있나 주네 게 콜라노 때네 닥사 갖다 샴조스 구나 닥사 토트 갈아 요트 노 때네 디디 양 갖다 페먼 당나 틱 타임 두 야래 티피 양 갖다 버딩 당체스 야마니 갖다 페먼 당체스 갖다 틱 타임 보노 야래 때네 갖다 수직 줄리 그 슈밧 간 갖다 참 시옷나 수직 갖다 페먼 당체스 ngata zo ko circa she satna ngata gyut gela gela spel gen che six pena ngata juli nang ko juli na mang pot kes pena ngata rakse kar po juste halman juste ngarmo ngari australian ta variety ma mang ko nokle te ngata yul yul nang ko kau shi ngata variety o gela chado tena na spel se ngata gyut gela re spel in sana tene dakse e time bo juli ku shi nang ko peman dang se thik time bo nokle
0: kaza ta dakse tene ngata dang dring e tus pena ngata ina peman sal che tu jin ok mo zong le jo yang ngata mang po ji de ja ngata spit se sana ngam po ong le jo ngata sa चलो गुजुग ज्यादा नहीं हम पंग सालचे सरकारी यों दुख पता है इसके नाते नहीं आता ओले जो खेत पर जियो क्या वाले जो कांग आता है स्पीड आता है कंप यंग तिना आता है यंग क्या सोसोरी यंग दांग दिन तुसी ना तंगन पर यंग ता योजा स्किया सोस जरा सोस यंग कजो खेत पर जियो तिना यो देना ओले जो कसा
1: कसा ले तिने खास कर आता है स्पीड लतंग कन में बुआ आता ग्राफ्टिंग जोन रियली से वो हमेशा मांग छत मंगा ता कुशु गुने रिक्स न को ओ तो गेला छरो गेली तंग आता अल्ता से खेना ग्राफ्टिंग बो गेला इंच दुख समा स्पीड ला जा जेना आता लक्सुक बुन का ओलो निशि सोसि सोंते दो इंगिस न सुम हलाले ngata yang turchok ngata shamchok lalta ngata gela ngata ekdam ngata chenmo charu gel dan du ngata tena chola ma i ngata gen gul ta ngata lo sum na ma ngata pema ta se chat pe ga leba me ro yali tena izuk chano ki ngata grafting bo ta ngata dek speed la yali jab ko pencil le rom cha jik po ne tena ngata yok po ne chap phala le patak ek sang sak ne kam se kam centimeter strict so shikha tok pa ngata pema bo tang sang na tena testing mo ne chap dasa ina yar be na ko khena ko uk juk sin juk sin na tena pura te ka ne cham shilting mo ne pema bo jar tel tena cham shi dalak yalga binga na te changma rik chik chik do dano yali te mal demo charuk sama na yali maga ngata i dakse budding is kal lena ko a dakse te na ko ngata loma chuk che se te o system o mari ngata yus chur kaba ngata ti budding jo no ya mane ngata dambu gyu te te ngata score te halal ring budding te ngis ka sirka mar yus chur yali khas kar ngata sham gul na ring budding kaba dambu je score te halal le pipi skul te te tang nu pa te ma mang po ngata i ro dul du yali ya ngata spill dal ta na ngata i chuli na ko pe man ma kaspo na po man jaram biru yali mar ई टाइम में ना चूजुक्स पसंद चाप चुली अपे मन ताला इस सीजन बोलते मो चारुक मार गाता कुशी नंग को गाता स्पीड बोलते मो चारुक ये ले मारते वो ये ते वो दमो नो समारा की गाता स्पीड ला गाता ग्राफ्टिंग बोतांग ना तेल तीने ते खातो चम शी डाला मिन्न लिप पो गोर चिक चिक बिंग दो ये ले मार गाता लदाक से नंग को सिरका तुक शुंदु वा की चुली गुन छेन मो सोंते गाता अपे मन तांग चे शी ये ले ते मार छेन मो सोंते पे मन ताला का डालक चिक ची अपे मन ता तेना मन बाकी समा यंग तेना रुस्त नो ये ले ते के चम शी यंग गाता पे मन ता चे सिरका नंग को गा लो निस सुम chakan chun ne na palanga ta peman ta na te o tene pura gorbo gangpo wo lemo chano ya le kasa tene ngata in na ko ngata yungge thap sofia in na peman ta sma ngata chang thap smet no ya le aga ngata gyuchi gel experience sama na ten department ne na ko ngata sanga ta ma ma po charji borte no in na ngata variety un gela chana ngata philo a ngata kal ngen chana yungo spel ches thas gela no ya le in na ngam po ngata mixer le de ngata अप्रैल नंगुगा इका ngata izuksi workshop chi chenmo jang chos pin yale ka be nangwa UT administration nang ata spena philong ne private company gun nang yapong ata chadon ji chos kya ki ngata ladak sinang ne chuli gyala bin kan khas kar ngata philo akal nya chesbo halman gyala duk jus no yale tyuk ngata galchi se ngata degree re yo yale te nangwa ngata target khodang stong chik metric tan ji so ba ngata kalin je chong inches na is stong chik metric tan ma mang pon le ma ngata yul sang mane khong se ngata sam shi nyan nang gyala variety gos no yale isu variety je ngata ladak sin ne philo akal
0: तेगुन जाचे सिनलो तेस्कोला दोरदुशिंग मन ओलेशु
1: कासले तेनेगाय डिपार्टमेंट नेन को नस्री जियो दियाले स्पेनगा ता दसांगा ता नेमो आयो तेनो लेते सोला सस्पोला इनो लेते ने नुब्रा तेस से न सुमुर यो तेनो याले दसांगा ता इनेमो नन सस्पोल गुने नस्री गुने का पेमेंट ता स्किल लो दियाले ये मतांग ता सुमी मा शिया यांग ता पेमेंट ता शे समे दो तेबे का लोबजों जिन ने सावना निजा का सुते गजे स्टाफ गुने को शे पेमेंट ता दुक ते तेबे का नगा ता लोबजों ने नमा ग्याला नो याले तो मन ता युल मा मा पो यांग ता ग्याला यों दुक ता एक्सपर्ट मा मा पों दुक हलाले ते तेगुने का ने लाप से पेमेंट ता चेस पो मतलब शेशेस पंगा ता जरूरी यू नो समरा याले ओले बाकी गता तो नो किंगा ता पेमेंट

Dersen içeren için pesons kadar degrim sanacağız. Dine degrim pulkan en pin konçok reksin yan degrime kodik zatkan sona malçok. Medium wave 284.9 meter seni 1053 kilohertz aur FM 101.1 megahertz par ham आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाई, आज आपने इस वक्त के कार्यक्रम में सुनेंगे फिल्मी गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं नकाब फिल्म से ये गीत जावेद अली की आवाज़ में।

कुमार सानू और अलका याग्निक को आइए अब सुनते हैं एक रिश्ता फिल्म में। गीतकार है समीर और संगीतकार है नदीम श्रवण।

फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं टेढ़ी पर फिल्म से ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और शान को, चुरा लिया है तुमने फिल्म में। गीतकार है सुधाकर शर्मा और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

0: ngaji akashwani le ni jut kasata to so tapigis thing ni la dasna na chulna te sing ni jil chasana jat
1: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कसता सोनामांचु के सलकनी ई लुबान सनजात

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। फौजी अफसर मुल्क और कौम की खिदमत के लिए खुद को वक्फ रखें, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित बरादरी की सकाफती विरासत को तहफ्फुज़ फराहम करने पर दिया जोर। और खलीफा दोम हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाह ताला अन्हु के योम शहादत के सिलसिले में वादी भर में दीनी इज्तिमात मुनक़द। अब पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज उत्तराखंड के शहर देहरादून में कायम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की 158वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत करके 1481 नए फौजी अफसरों का फौज में खैरमकदम किया। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी मुल्क और कौम के लिए बहादुरी, खिदमत और वक्कार की एक अलामत है। पास आउट हुए अफसरों में 9 खवातीन भी शामिल हैं, जिस पर सदर जमहूरिया ने खुशी का इजहार किया।
1: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के 217वें कोर्स में शिरकत की। उन्होंने भारतीय फजाए के कमीशन किए गए नए अफसरों से तलकीन की कि वो सिक्योरिटी की बदलती सूरतहाल के पेश नजर जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाएं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना हुए हैं। रवानगी से कबल नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दौरा भारत फ्रांस और भारत स्लोवाकिया के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम साबित होगा। वजीर आजम कल फ्रांस में वहां के अपने हम मनसब एमिनल मैक्रॉन के साथ भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्लोवाकिया के दौरे के दौरान वहां के सदर के साथ बाहमी मफादात के कई मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 इजलास में शिरकत करेंगे। इधर वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के नौजवान मुख्तलिफ शोबों में, खासकर साइंस, टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर्स के शोबों में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत स्टार्टअप के सेक्टर में एक चोटी का मुल्क बन गया है और युवा शक्ति अपनी सलाहियत के बल पर तारीख रकम कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित बरादरी से कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में सनती, तालीमी और सकाफती इदारे कायम करें ताकि उनकी बेमिसाल सकाफत और

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: कसतत सरिंग डोल करता हूँ सरिंग डोल में सरकार ने ई लुबा सनाचात

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कसतत जिंदगी सलकने ई लुबान से नजात।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ल्ड के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अबैम शरद चंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
4: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 2,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
3: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें।

0: प्रशांत महासागर में अलनीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अलनीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में उड़ीसा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्ला गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को दिया 195 रन का लक्ष्य। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on the first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. 5 Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. 5-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration, focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dhiraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of 3-match series in Dharamshala. Prime Minister Narendra Modi will reach the French city of Nice tonight, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: France occupies a special place in India's strategic vision. As Prime Minister Narendra Modi arrives in Nice tonight at 10:30 p.m., attention is focused on a series of high-level engagements aimed at deepening cooperation across innovation, technology and strategic sectors. Tomorrow at 2:30 p.m, Prime Minister Modi and President Macron will jointly inaugurate Bharat Innovates, India's flagship deep tech showcase in Europe. More than 120 Indian startups, along with global investors, CEOs and technology leaders, will participate in the event. Prime Minister Modi will also hold bilateral talks with President Macron. Discussions are expected to cover defense, artificial

0: Individuals and groups are creating, sharing, and circulating unverified and provocative content on various social media platforms. In a social media post, Manipur police strongly advised the public not to believe, share, or forward rumors or unverified content and to exercise caution while engaging with information circulating on social media. In men's cricket, Afghanistan have set a target of 195 runs for India in the rain-affected first one-day international ODI of the three-match series in Dharamshala, Himachal Pradesh. The match has been reduced to 25 overs per side after relentless rains delayed the start. In reply, India were 91 for 1 in 10.3 overs when reports last came in. Earlier put into bat, Afghanistan were bowled out for 194 in 24.5 overs. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to reach Nice tonight on first leg of two-nation visit to France and Slovakia to hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron and jointly inaugurate Bharat Innovates tomorrow. Five Indian Air Force personnel killed in AN-32 aircraft crash at Jorhat in Assam. Five-day BRICS Agriculture Conference ends with unanimous adoption of Indore Declaration focusing on food security and smart technology in farming. Lieutenant General Dheeraj Seth appointed as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for India in rain-marred first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दो मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में आज रात नीस पहुंच रहे हैं। वो फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और कल भारत इनोवेट्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। आसाम के जोरहाट में एक AN-32 तैयारे के गिरकर तबाह होने से भारतीय फजाइया के अमले के 5 अफराद जा बहक हो गए हैं। 5 रोजा ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस इंदौर आलामी को इत्तफाक राय से मंजूरी देने के साथ खत्म हो गई, जिसमें गजाई तहफ्फुज और खेतीबाड़ी में स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को मुल्क का अगला फौजी सरबराह मुकर्रर किया गया है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के बारिश से मुतासर पहले बैन अल-अक़वामी मैच में भारत के लिए 195 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक जमहूरिया के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस दौरे को यूरोप के साथ भारत की शराकत दारी में एक अहम तरीन लम्हा समझा जा रहा है। 2014 के बाद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस का 7वां दौरा है। इस साल जनवरी में कलीदी भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदे के बाद से इस बड़े आजम का यह उनका पहला दौरा भी है। फ्रांस भारत के साथ मशरकी दुनिया में कदीम तरीन और इंतहाई भरोसेमंद जामिया शराकतदारी रखने वालों में से एक मुल्क है जो इस दौरे का मरकजी मकाम रखेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस को भारत के जामे विजन में खसूसी मकाम हासिल है। इस साल के अवैल में सदर मेखवा के भारत के दौरे के दौरान दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात के खसूसी आलमी जामे शराकतदारी का दर्जा दिया था, जो कि आलमी हल को एक नई शक्ल देने के लिए उनके मुश्तरक मकसद की अक्कासी करता है। भारतीय मियारी वक्त के मुताबिक आज रात 10:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी नीस पहुंचेंगे, जहां आला सतही मसरूफियात के एक सिलसिले पर तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसका मकसद इख्तिरा टेक्नोलॉजी जामे शोबों में ताउन को गहरा करना है। कल दोपहर 2:30 बजे वजीर आजम नरेंद्र मोदी सदन में अख़वा मुश्तरक तौर पर भारत इनोवेंट्स का इफ्तिताह करेंगे, जो यूरोप में भारत की अहम दीप टेक नुमाइश है। आलमी सरमायाकारों, सीईओज और टेक्नोलॉजी लीडरों के साथ साथ 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स इस तकरीब में शिरकत करेंगे, जो भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के दौरान मुनक़िद की जा रही है। वजीर आजम मोदी सदर में अख़वा के साथ बाहमी बातचीत भी करेंगे। तवक्कुए तबादला ख्याल में दिफा, मसनूई ज़हानत, खला, तिजारत, तालीम और दीगर आलमी चैलेंजों का अहाता किया जाएगा। यहाँ नीस में इस बात के कवी इम्कानात हैं कि यह दौरा भारत के इंतहाई भरोसेमंद जामे शराकत दारों में से एक में नई तहरीक पैदा करेगा, यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात को मजीद मुस्तहकम करेगा। फ्रांस से नीस से आकाशवाणी न्यूज़।